पहले से वाले जोक एलओएल है, एलओएल जोक है, जोक बनाया ना जोक, वी आर रीवर्किंग टू टुमॉरो, सी नाउ वी डूइंग इट. ऑलराइट गाइस, एलओएल, आई वाज जोकिंग, यू थिंक आई एम सीरियस नाउ.